को सब खाली छोड़ दे नाच्ने हरू संगे नाचो न नाचने ले ताली ठोक दे अपने मन को मालिक म दुनिया को किनो सुनु डीजे यही म्यूजिक बजा जब सम म चेंज न भन नाच न फुल गास गई सराय जस्ट देखाई सब दुख पीड़ा लाई फुल स्टॉप लगाए अरे बच्चा हौ तिमी बच्चा ठुलो स्वर ले न बोल मिस्टर आरजे को भन्छौ घर गएर टिभी खोला।

ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ रिश्ता है इस जगह से? स्ट्रेंज, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों? रंजना,

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।